श्रोता मित्रों, लोगों पर तीन एहसान कीजिए। फायदा नहीं कर सकते तो नुकसान भी ना करें, खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाए, और तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। आ पंक्तिओ कही जाए छे कि जीवन में आपणे कोईने कशु आपी न शकीए तो छीनववानो प्रयास शा माटे करवो जोईए। बस आम चालता चालता बैठा बैठा विचारता विचारता कई ज करवा माटे नथी तो कोईक ने हैरान ने परेशान शा माटे करवो जोईए। जीवन छे जीववा माटे, सुख ने साहेबी मेळवी छे तो कोईना सुख ने साहेबी तो न छीनववा जोईए। आ सुंदर विचार ने जीवन में चौक्कसथी उतारो। मस्त रहो, व्यस्त रहो ने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: चिते प्रसन्ने भुवनम् प्रसन्नम् चित्तम् विष्णे भुवनम् विष्णम् अतो भिलासु यदि ते सुखे स्यात् चित्त प्रसादे प्रथम यत्स्वे। मन प्रसन्न होय तो सर्व जगत प्रसन्न देखाशे, मन खिन्न हशे तो आखू जगत खिन्न देखाशे। एटले सुखनी आकांक्षा जो होय तो कायम मन ने प्रसन्न राखवानु प्रयत्न करो जोई। तमे सांभळी रह्या छो रेडियो पालनपुर 90.4 FM। मस्त रहो, व्यस्त रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कुटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुश

0: चल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
0: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
1: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
1: और अब आइए श्रोताओं, पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
1: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
0: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800044559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
1: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
0: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
0: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
0: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
0: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समतामूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समतामूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
0: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समतामूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
0: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है? इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
0: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है

0: सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक है
1: जी।
0: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
0: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन लें, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
0: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सके, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
0: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
1: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
0: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी।
0: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
0: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे, तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझे। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है
1: जी। प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या है।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी,
0: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
1: जी।
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह

0: समूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं
1: जी
0: और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं।
1: जी
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है
1: जी
0: या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है,
1: जी
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है।
1: जी
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है।
1: जी
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं।
1: जी
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा
1: जी
0: आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है,
1: जी
0: ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है।
1: जी
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं।
1: जी
0: इसमें एनईपी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में।
1: जी
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं,
1: जी
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा अब ये लोग क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ, उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी कि किसी और मौखिक

0: भाषा में है।
1: जी, ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं। जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं। लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी,
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIET NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से CIET की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी,
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
1: जी।
0: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो, टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
1: जी जी,
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें,
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
1: जी,
0: उनके उभारों को महसूस कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं
1: जी।
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती है कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
1: जी।
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIET NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है, और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
1: जी।
0: तो ये भी एक हमारी पहल है
1: जी। प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहाँ पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी,
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक CIET NCERT, आपको सीधा वहाँ उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहाँ से ले सकते हैं
1: जी।
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, और CIET वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती है
1: जी।
0: और

0: यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से,
1: जी
0: एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से और
1: जी
0: साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
1: जी
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
1: जी
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं,
1: जी
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं। उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती है।
1: जी
0: तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं। तो
1: जी
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात
1: जी
0: की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से
1: जी
0: हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी
0: की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक
1: जी
0: और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी
1: जी
0: है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए,
1: जी
0: आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए।
1: जी
0: साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और
1: जी
0: सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी।
1: जी
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
1: जी
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा। इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा।
1: जी
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं, तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अरे बेटा, गई काले उमारा भत्रीजाना घरे गयो तो मारी तो आंखो ज फाटी गई। आखो दी एसी चालतू आए, रोज वॉशिंग मशीन वपराय ने घर मा बे बे फ्रिज, तो एनु लाइट बिल खबर छे केटलू आवे छे? जीरो। मैं पूछू तो भत्रीजो कहे के काका आ तो बधी ऊपर वाला नी मेहरबानी छे, एटले के छत पर लागेली सोलर पैनल्स नी। मैं विचारी हवे तो आपणे आ नंखाबूज पड़शे। पीएम सूर्य घर मफत वीजळी योजना जोड़ावा माटे रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बढ़े चलो।

0: इन गरीबों का हक आप इनको देते क्यों नहीं पिताजी?
1: इन भिखारियों के सामने मैं अपना सर झुका दूं, तुम ये कहना चाहती?
0: मगर वो सच्चे हैं पिताजी।
1: हुकूमत मानती, अगर वो सच्चे हैं तो हम झूठे हैं क्या?
0: सारी दुनिया यही कहती है, मेरा दिल भी यही कहता है।
1: मालती,
0: अगर ऐसा नहीं है तो अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए आपने मंजू को दुनिया की आंखों से कहाँ छुपा दिया? वो मेरी बहन है, क्या ये झूठ है? वो आपकी बेटी है, क्या ये झूठ है?
1: मालती,
0: इन गरीबों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, ये सच्चे हम झूठे हैं, ये सच्चे हम झूठे हैं।
1: मालती, खबरदार, झूठा तेरा पान चलाएगी
0: पिताजी।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: जो कोई भी कदम लेने से पहले 50,000 चीजें सोचता है, जो ये सोचता है कि अगर मैं फिर गिर गया तो, अगर फिर से कोई नाकामयाबी हुई तो, काम, रिश्ते, नौकरी, जिम्मेदारियां, हार से इतना डरते क्यों? मैं तो ये कहती हूं कि जितनी बार हारे हो ना, उसका एक कैलेंडर बनाओ कि कहां कहां हर साल तुमने कहां कहां कितनी हार देखी है, कहां कहां तुम टूटे हो, कितनी तकलीफें तुमने देखी है, कितनी बार तुम्हें ऐसा लगा है कि जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, कंधे जो है वो कमजोर होते जा रहे हैं। जब बहुत भारी सा लगने लगे ना, तो ऐसा एक कैलेंडर बनाओ, वो सारे की सारी तारीखें, वो सारे साल लिखो कि यहां यहां मैं टूटा था, यहां मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई थी, यहां यहां मैंने नुकसान देखा था। वो कैलेंडर तुम्हें हर रोज ये याद दिलाएगा कि कितनी ऐसी लड़ाइयां तुमने जीती हैं, तुम्हारी तकलीफें, उन तकलीफों के पर्वतों को पार किया है तुमने, इन चट्टानों के बीच में से तुम निकले हो, कौन सी ऐसी ऐसी ऐसी दुविधाओं में से छल कपट के समंदर जिनको बस लांग के, डूब कर नहीं लांग के तुम आए हो, तैर के आए हो। अपने आप को ये याद दिलाना ना जरूरी हो जाता है, और मैं बस ये चाहती हूं कि तुम्हारे अंदर का ये डर कहीं चला जाए, निकल जाए बस। वैसे तो कई सारे मंत्रा होते हैं जिंदगी जीने के, पर ये एक मंत्रा ना मुझे बहुत सही लगता है, भाड़ में जाए। थोड़ा सा बुरा जरूर लग सकता है, लेकिन एक बार मन में जब ऐसा आ जाए ना कि क्या जाएगा, हद से हद जाएगा क्या, मेरा है ही क्या जो जाएगा। एक कहानी मेरे बहुत प्यारे से दोस्त ने मुझे 2 दिन पहले सुनाई कि शहर के सबसे महंगे से महंगे सड़क पे, महंगे से महंगे बंगले में रहता वो बड़ा सा करोड़पति उसी शमशान घाट में गया है, जहां सबसे सस्ती सी कोई गली में किसी झोपड़े में रहने वाला, और दोनों को उस चिमनी में डाल के वो लाल बटन दबाते ही ऊपर से धुआं निकलता है ना, जैसे ही शव जाता है, वो देह जब जलता है ना, भस्म हो जाता है, तो सिर्फ धुआं रह जाता है। चाहे आप करोड़ों की गाड़ी में या फिर सड़क पे कहीं धूप में एड़ियां रगड़ रहे हो, लेकिन अंत तो दोनों का वही है। तो जाने वाला तो सब कुछ है अंत में, तुम मैं सब कुछ, तो किस चीज का डर तुम पालते हो अपने अंदर, क्या नुकसान हो जाएगा? कदम लेने से पहले डरते किस चीज को लेकर हो? निकाल के फेंक दो इस डर को, आज रात सो तो इस हौसले के साथ कि मेरा है ही क्या जो जाएगा। मैं मानती हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुशनसीब वो लोग होते हैं जो शून्य से शुरुआत करने की ताकत रखते हैं, और अगर ऊपर वाला तुम्हें बार बार शून्य दिखा रहा है ना, तो कोई बात नहीं, वो लम्हा आएगा जब ये सारे शून्य सही जगह पर कहीं पीछे लगाए जाएंगे, और तब तुम्हारी कीमत नहीं होगी, तुम अनमोल हो जाओगे। इसी के साथ आज की एक टॉक यही समाप्त होती है।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: चलता है, सब कुछ चलता है। एक वक्त ऐसा आता है जब तुम कुछ नहीं करना चाहते, जब जैसे भी हालात हो, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, तुम बस जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने देना चाहते हो, सब कुछ जैसे छोड़ देते हो। तुम ये सोचते हो कि मेरे कुछ कहने या करने से फर्क ही क्या पड़ेगा। यू नो यू वेरी इजीली एक्सेप्ट एवरीथिंग। तुम्हारे जहन में ये आता है कि ठीक है ना, कितना कर सकते हैं, कितना अपने हिसाब से आप कहानी में बदलाव ला सकते हैं। अंत में जिसने लिखी है उसने सब अपने हिसाब से ही करना है, तुम्हारे या मेरे कुछ सोचने से होने ही नहीं वाला। तो जब कल सुबह उठने के बाद होने क्या वाला इसका अंदाजा ही नहीं है, तो क्यों ना जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। इस बात की फिक्र करे बिना कि कितना हो पाएगा, क्या जैसे सोचा है वैसा वैसा हो पाएगा, बात वैसे बन पाएगी। क्यों ना बस ऐसे उस पर छोड़ दिया जाए। आखिर किसी की जिम्मेदारी है इस कहानी को पूरा करना, जिसने शुरू की है। आगे का सीन भी वही डिसाइड करे, हम क्यों करें। हमारा काम तो बस किरदार निभाते रहना है ना।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: लगता है लॉन्ग डिस्टेंस, जब अपने ही शहर का सूरज पराया सा लगता है, जिस सिग्नल पर सुबह दफ्तर जाते वक्त बीच के वो दो मिनट तुम साथ होती तो ये ख्याल आता है, जब अपनी ही खिड़की से आती हवा भी अपनी नहीं लगती, शायद तुम्हें भी यही छूती होगी ये ख्याल आता है। फोन की बैटरी खत्म नहीं होने देता मैं, फोन की बैटरी खत्म नहीं होने देता मैं, हर रात तुम्हारे वीडियो कॉल का इंतजार रहता है। थकान सारी उतर जाती है मेरी, थकान सारी उतर जाती है मेरी, जब ऊपर आसमान में बैठा वही चांद यहां मुझे और वहां तुम्हें तकता है। लोग पूछते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कितना टिकता है, मैं कहता हूं जब तक मुझ जैसा कोई तेरे ख्यालों में बार बार बिकता है, लॉन्ग डिस्टेंस टिकता है।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभळता रहो, रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: बस सब कुछ बढ़िया। तू बता, इससे बड़ा झूठ ना कोई नहीं बोलता। ये झूठ शायद हम दिन में पता नहीं कितनी बार बोलते हैं। अक्सर लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं, खूबसूरत सी इंटीरियर डेकोरेशन, सजावट, काफी कमाते हैं मेहनत से और खर्च करते हैं, सुंदर सा घर। लेकिन असल में हम रहते कहाँ हैं पता है? हम रहते हैं अपने दिमाग के अंदर। हम रहते हैं उन लोगों में जो हमें जानते हैं। हम रहते हैं उनके ख्यालों में। हम रहते हैं खुद के सवालों में। हम रहते हैं बेवजह सी बवालों में। जब इतना सारा खर्चा करके, मेहनत करके अपने घर का हर कोना सजाने के पीछे कितनी सारी मशक्कत करते हैं, अपने जहनी घर के बारे में तो सोचते ही नहीं है। जब हम लोगों की बातों में रहते हैं, उनके दिलो दिमाग में रहते हैं, ऐसे तो कितने घर हैं जिन्हें सजाने के बारे में हम सोचते ही नहीं है। अब आप कहिए, हम कितने घरों में रहते हैं?
1: नेट हो या ना हो, रेडियो तो बजता रहेगा आपके दिल की धड़कनों में, और इसे धड़कते रखेंगे हम, यानी कि रेडियो पालमपुर 90.4 FM। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर 90.4 FM।

कभी कभी सोचती हूं कि मुकम्मल का मतलब क्या होता है. What complete stands, you know? मुकम्मल होना किसे कहते हैं. बहुत ही प्यारा सा लाइक लफ्ज है मुकम्मल, कंप्लीट, पूरा होना. ऐसा कहते हैं कि जब कोई गुजर जाता है ना तो कहते हैं पूरे हो गए, जिसका मतलब होता है अधूरे थे पूरे हो गए. इसका मतलब जितने लोग जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं, वो अधूरे हैं. पूरा होना अपने आप को खत्म करने जैसा है. तो जब पूरा होना ही अपने आप को खत्म करके है तो क्यों ना इश्क किया जाए, क्यों ना

0: आप को बर्बाद किया जाए, क्यों ना खो दिया जाए ताकि पाना क्या है वो पता चले, क्यों ना एक ये कोशिश भी की जाए। और ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इश्क मोहब्बत में अपने आप को खो दे, नहीं। एक माँ जब अपने बच्चे का भरण पोषण करती है, उसे प्यार करती है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, आधी रात को अगर वो बीमार हो तो उसके सर पे पानी की पट्टियां रखती है, उसके खांसते ही खुद बेचैन हो जाती है, एक माँ अपने आप को खो देती है, या ये कह लो कि अपने आप को पा लेती है जब एक बच्चे को बड़ा करती है, अपनी औलाद को। शायद देना इसी का नाम जिंदगी है। हम पाते ही तब है जब हम देते हैं, जब हम खो देते हैं हम तभी पाते हैं, है ना। मैथ्स है या साइंस है, लेकिन कुछ ऐसा ही है, जोड़ तोड़ जिंदगी का गणित। अक्सर कहते सुना है लोगों को कि कोई गुजर गया हो तो वो पूरे हो गए। पूरे मतलब क्या? पूरे मतलब हम जो ये जिंदगी जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ये अधूरे हैं। हम अपना अपना कर्म काट रहे हैं, और जब सब हिसाब हो जाएगा तब बारी आएगी एक एक करके सबकी, आपकी मेरी, तब हम पूरे होंगे, लेकिन तब तक हम अधूरे हैं। और इसीलिए इस अधूरेपन में ना अच्छे काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मैंने अक्सर लोगों को ऐसा कहते सुना है, हर बार मैं ही क्यों झुकूं? क्यों मैं, वो क्यों नहीं झुक सकता, ऐसा क्यों? चलिए आज जरा ऊंच नीच की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि झुकना ताकत होती है। जहां जहां सर झुकता है बात वहीं बनती है। मेरा नाम है एकता और आप सुन रहे हैं एक टॉप एकता इन लव पर। सजदा जमीन पर हो तो बात आसमानों तक पहुंचती है, ऐसा है। आप सोच कर देखिए, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जहां झुकने पर बात बनती है। जैसे कि मेहनत की कमाई हुई रोटी जब थाली में होती है, उसे तोड़कर एक निवाला लेते हैं तो जरा सा आपकी गर्दन झुकती है ना, तब जाके वो निवाला आप अपने मुंह में डालते हैं, है ना? थाली की ओर झुकना पड़ता है, थाली कमाने में, रोटी कमाने में जो मेहनत लगती है। आपको जब कोई मान सम्मान देता है और आपके गले में माला डालता है फूलों की, तब भी आपको झुकना पड़ता है ना, वो इज्जत कमाने के लिए। इसी तरह से देखा जाए तो पेड़ पर भी जब फल लग जाता है तो डालियां जरा सी झुक जाती है। जितना बड़ा विशाल पेड़ होगा, डालियां झुकती है ना, वजन हो जाता है फल की वजह से। लेकिन फल वाला पेड़ होता है तो डालियां जरा झुकती है ना? आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी चढ़ते वक्त भी नजर का नीचे होना जरूरी है। हमें कदम बहुत देखकर आगे बढ़ाने पड़ते हैं कि कहीं गिर ना जाए, डगमगा ना जाए। इसलिए नीचे देखना, झुकना, ये सब बहुत जरूरी होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि सजदे जमीन पर होते हैं, सर यहां झुकता है और आपकी बातें, आपकी दुआ सीधा आसमानों तक पहुंचती है, वो जो सबसे ऊंचा है वहां तक पहुंचती है। इसीलिए झुकने को कमजोरी नहीं, ताकत समझिए। अगर आप झुकना जानते हैं तो आपका कद बहुत ऊंचा है, कसम से कह रही हूं। ऐसे बहुत ऊंचे हैं मुझे मिले मेरी जिंदगी में, जिन्होंने मुझे झुककर अपनाया और उनका कद बढ़ता गया मेरी नजरों में और ऊंचे होते गए। तो झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना एक ताकत है। जितना आप झुकेंगे आपका कद उतना ऊंचा होता है। कंडीशन अप्लाई।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4।

गुस्से के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत बुरी बात है, बहुत तकलीफ दे देता है, नुकसान हो जाता है। मैं आज किसी के साथ बात कर रही थी और ये एहसास हुआ कि गुस्सा और आंसू दो ऐसी चीजें हैं जो एक तरह से प्रमाण है इस बात का कि दो लोग कितने करीब हैं, क्योंकि आंसू और गुस्सा आप हर किसी के आगे नहीं व्यक्त करते। आप बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत भरोसा चाहिए एक दूसरी साइड देखने के लिए, चेहरे पर हंसी, खुश मिजाज। और अक्सर हम जब लोगों से मिलते हैं तो हम यही कहते हैं ना कि हम हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया है, फाइन। कोई अपनी अपनी डार्क साइड्स कभी नहीं बताता, अपनी तकलीफें नहीं बताते। वो बयां करने के लिए आपके अंदरूनी जो रूह होती है आपके अंदर, क्योंकि दो इंसान है ना, एक आप बाहर जो इंसान है और एक आप जो अंदर इंसान है, आपके अंदर जो इंसान है उसे भरोसा आए कि सामने कोई डर नहीं है। जब वो उसका पुल बन जाता है, एक ब्रिज बन जाता है दो लोगों के बीच, फिर ऐसा होता है कि आप जो हैं, आप सारे, आप अपने आंसू, अपना गुस्सा, अपना डर, आप अपनी सारी की सारी तकलीफें, सब कुछ एक थाली में सजा के टेबल पर जिसे रख सकते हैं। और ये तब होता है जब इतना भरोसा और इतनी सहनशीलता सामने दिखाई दे, जब दिल को ये तसल्ली मिल जाए कि हाँ यहां आप अपना संदूक खोल सकते हैं, यहां उस तिजोरी खोला जा सकता है, मन का अपने आप को पूर्ण रूप से बाहर आके दिखाना, ये हर किसी के साथ नहीं होता।

0: आंसू और गुस्सा प्रमाण है इस बात का कि दो लोग कितने करीब हैं। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, ये दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, ये एक एम्प्लॉय और उस बॉस का रिश्ता हो सकता है, ये दो बहनों का रिश्ता हो सकता है, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी और भरोसा उसका पीक है आंसू और गुस्सा।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: Hey guys, thank you so much for watching this video. Make sure to hit the subscribe button if you loved it. We're so close to 10,000 subscribers, so I'd love if you hit that subscribe button immediately to join my community so I can share my journey with you. Thank you so much. Hope you love this one. Let me know what you think in the comments. See you soon.
1: शहर नो आवाज एटले 90.4 FM रेडियो पालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडळ संचालित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ शहर नी पोतानी ओळख आ शहर नी पोतानू टॅलेंट युवाओ माटे जागरूकता आणि विज्ञान ना प्रचार प्रसार ना तमाम कार्यक्रम साथे समुदाय नी तमाम आवाज ने वाचा आपतू एकमात्र प्लेटफॉर्म एटले 90.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो पालनपुर सांभळता रहो मस्त रहो खुश रहो 90.4 FM।